मस्तक हर प्रभ लिखिया गुरु नानक मिलिया। भई गुरु सिखां दे चरणां दी जपन वालियां दे चरणां दी तोड़ी, गंगा जमुना सुरस्ती गोदावरी ते करें उद्दम तूर साधु की थां। किल विख मैल भरे परे हमरे विच, हमरी मैल साधु की धूड़ गवाई। महापुरख जपण वाले जदों तीर्थां ते चले जाण तां तीर्थां दा वी उधार कर जांदे, क्योंकि तीर्थ भी पुकार करदे हन, हे वाहिगुरु संसार दे जीव साडे विच इशनान करके पापां दी मैल सुट जांदे हन। कोई आप दा प्यारा भेज जिदे चरण पैंदियां असी फिर पवित्र हो जाइए, उचारण करो श्री वाहिगुरु। इस लई भगत नामदेव जी कहंदे हन कि इह सुभाग मैनू ही प्राप्त होया, मैनू

அவளையான குரு காபு உடனவையான நாம இன்னும் இருக்கு. தாய் சஜாவுக்கு சுத்தி சுத்தி பார்க்க சொல்லக்கா கேர் லகா சொல்லிக்கா தும் நாம இதே நாம் ரெண்டு கேர் சையத் குரு சார் பாய் சஜா காது तो गुरु का हुक्म ही मने आए तेरी पर क्योंकि हुक्म बख्श हुक्म मालक की बख्शिश नाल जेड़ा हुक्म देना है वही रहमत भी ना तो हुक्म नहीं मनिया तो मैं जरूर मनना ये अपने आप रह जाएगा पर गुरु जान के तेरी सेवा ते जे भजे न सही गल तो सामने कोठी विच बंद भी कर रहे हैं। मैं गुरु का हुक्म मनना भाई सिद्धिया उठिया तुर लगा मैनू कौन है बंद करने वाला बुद्ध शाह ने मुरीदा ने इशारा किया इन्होंने पकड़ के भाई सज्जे को कोठी बंद कर बुद्ध शाह ने मेरा बाल बच्चा भुख नाल मर जाए बुद्धू शाह ने क्या नहीं जिन्हें हुक्म दिता है वो आपे रक्षा करेगा ये तेरे मन की कमजोरी की रक्षा करेगा बुद्धू शाह एवे तो गल्ला बुद्धू शाह दिया सुन सुन गल्ला सिख धर्म जिगाड़ा बच खा के मुश्किल नाल उठाया उसने मुंह च पानी पाके कहता सतगुरे की किया मैं उधर कैद पता है मेरा बाल बच्चा सब उनकी मर्जी कौन खिलासी जाए कोठी बंद एक दिन बीतिया कुछ नहीं खादा सी दूजा दिन होया बुद्धू शाह ने किया सजे प्रसाद तक नहीं मैनू भुख नहीं तीजा दिन हो सोचने लगा मैंने बाल बच्चे तो भुख नाल मर गए हो गए तू भुखा क्यों मर गए अगो सही भुख बड़ी राज होंगे भुख बड़ी पर बंदे फरीद ने क्या मौतों भुख मिली इंसान भुख से कई बड़िया बड़िया गलतियां कर बाणी की लिखा है दुख विछोड़ा एक दुख भूख एक दुख सब कुमार जमदूत एक दुख रोग लगे तन खाए व्याज न होने का सात पानी छकन लग गया नौ महीने भी समा नौ बीत जाने समय का पता ही नहीं ना पलों दिया घड़िया घड़िया ने सकेंद चिंता ने मिनट मिनटा ने घंटे घंटिया ने पैर पैर ने दिन दिना ने हफ्ते हफ्तिया ने महीने महीनिया ने साल साल दिया सदिया सदिया के जुग बीते जा रहे जुग अखी केरे माट के पल पल मेरी वे आए पल पल करके के आयु बीती पता ही नहीं लगता मन जंजाल ना छोड़ी जम दिया दबा है दिन के पैर पैर के घड़िया अगर कहते आव घटे पंजी जाए नौ महीने मैं भाई सज्जा तेरे पौ पन मोकले हैं अज नौ महीने बीत गए हैं तू जा सकते भाई सज्जा तू जाओ किधर जाओ बाल बच्चा तो भुखना मर गया हूं कोई आसरा नहीं किड़े पास जाओ तू पिता ने कहा जी मेरे को गुरु को गुरु को बुद्ध शाह अब तो मेरा कोई बाल बच्चा बचे नहीं तो जब कोई बच भी गया होगा तो उन्होंने भी रोक के मरागा कि गुरु का नाम भुल के नहीं देना लोकी बंदी छोड़ के चंगा बंदी छोड़ गुरु नौ महीने की कैद दे मैं नहीं जाना सही गुरु शाह ने किया तो भाई सज्जाद ये भी कोई राज है तू नहीं समझ मच्छी की जाने साधन के दावे
ਪਾਣੀ ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਸਾਗਰ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਕਰੇ ਆ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਪੜੀਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਤੇ ਪਰਖਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨਾਲ ਪਰਖਣ। ਪਰ ਇਹ ਗਲਤ ਪਾਣੀ ਚ ਲਿਖੇ ਹੈ ਦਰਿਆ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ

मछली कैसे अपना कैसे देखा तय तय पूर्ण उनसे निकली पूर्ण मछली पानी को बिछड़ी नहीं से जीवन हो गया। गुरु का सिख जिस वेले गुरु ने हुक्म बिच रहा है तो बख्शिश ही बख्शिश है जिससे जिस मनमत्र आ जाता है तेरे का ही आन होता है अपने पानी जो चले पाई सो बिछड़े जो मच्छी की जाने सागर के दावत पंछी की जाने आकाश के दावटा पाई सजा सिख की जाने गुरु के दावट है मेहमान जाने से वे वा पाठ तेरा पर भाई सज्जा चला जा गुरु को ये विचार बनाया है तो एक चिट्ठी भी मेरी ले जाए जाके गुरु को देके अरदास करी कदे मैं पापी से ही बख्शिश करे गुरु मैनू भी दर्शना दीता भाई सज्जे ने किया ठीक है गुरु साहब अगे गुरु की चिट्ठी तेरे को ले आया हां ते तो नौ महीने ढक दिता है तेरे तेरी पत्रकार लेके गुरु को चला गया गुरु 18 महीने ढक देगा उन्होंने की कर मैं नहीं जाना चंगा भी तेरी मैं ख्याल है चलो मना अपने पिंड चलते शहर कोई बच ही गया हो तो भाई सज्जा अपने पिंड पर गया आया की वेखिया जिथे कखा की कुली सी उथे आलीशान मकान बनिया बिर बिर पिया तक जे सुदामे ने तकिया सुदामे उत्ते भी यह समाया भगवान कृष्ण से सुदाम दोवें सुदीपर की कोल पढ़ते विद्या पढ़ एक दिन सुदीपर जी की घरवाली ने कहा बच्चे हो जी मां जी घर भी लकड़ा कोई नहीं लकड़ा लिया जंगल दोवें तुरते सुदीपर जी की घरवाली ने सोचा बच्चे हम जल्द भी जा रहे हैं तो लगेगी सुदामे गल सुन कौन लै थोड़े गए छोले रंग चने रंग पोटली बन दिते किसी ने डांडी भुख लगे ये खा के ते पानी का पुट पी ले लकड़ा कट गया पंडा बनिया सिर के चुकन लगे निरंकार की रेत मारी डांडी मार रात पे भगवान कृष्ण ने कहा सुदामे हम कि करिए घर तो पहुंच नहीं सकते जंगल का मौका है सुदामे ने कहा महाराज कोई आ दरख्त है बड़ा वड्डा इन्हें उत्ते चढ़ जाते हैं रात इसे बिताने दिन होगा फिर तक एक दान के उत्ते भगवान कृष्ण जी बह गए दूजे उत्ते सुदाम भुख लगी सुदामे ने वो छोले वाली पोटली कटी सुदामा सोचन लगा मैंने जिस तरह मैनू भुख लगी है कृष्ण नू भी लगी होनी ते छोले छोड़े कृष्ण नू तो पता नहीं तो क्यों ना आप ही छक लेंगे भुख बड़ी जालम थी तो सुदामे ने की किया छोले वाली पोटली खोली ते एक फटका मारे यार एक चार संगत जिस वे छोले दंदा थले आए ते सुदामे ने जिथे आवाज आई रात का समा जंगल का मौका टिकवी रात तो दूजे दान उत्ते बैठे भगवान कृष्ण ने कहा सुदामिया कुछ खाना पे सुदामे ने छेती छेती मारा इतने भला की खाने मैं तो कुछ नहीं बेहतर भगवान भी चुप कर थोड़े समय के बाद सुदामे जिस वे दूसरा बका मारे रवादाई भगवान
भी कहने लगे भी स्वामी हम खा रहे हैं। महाराज तो दुखी तो पता है इतने पता तू मेरी मां बैठी है मैनू कुछ देने वास्ते एवं गरीबा ना विरास न कर भगवान जी विजुक कर कोई समय में बात प्यारी साल संगत किसी ने सुनाने तीजा फटका मारे फिर आवाज आई भगवान जी कह लगे स्वामी भावे मन से चाहे ना मन पर कुछ खा जरूर है महाराज तुम्हें कि पता है भगवान जी कह लगे सानू आवाज पी आई है दंदा की तो स्वामी ने कहा महाराज तुम बड़े खोए तुम पता नहीं मेरा शरीर जरा दुबला है ते बारिश हुई है ते शरीर भुखन लग गई है ते मेरा तो दंद से दंद पिया बजता है ते तुसी के लिए बुझा कमरे तो उस वेले भगवान पिछले बचन कर दिता जाओ दलिंद्रिया दलिंद्र कहते हैं कंगले नीवी शरीर जाओ दलिंद्री तो पवित्र प्रोह किया है क्योंकि वन के खाना बंदगी दिखा के खाना शर्मिंदगी खो के खाना गंदगी जरा खो के पिया खाता है वह गंदगी खाता भगवान ने वो वचन किया पूरा संदीपा जी की को पढ़ के विनय भगवान कृष्ण जी तो द्वारका नगरी ने मार्ग जा बने तो सुदामे ने कर सारी दुनिया का दलिद्र है कारोबारी सुशीला निके निके बच्चे खान को कुछ नहीं मिलता है कि सुशीला ने किया स्वामी मैं सुनिया है कि भगवान कृष्ण थोड़े मित्र स्वामी ने किया साथ पा भगवान को क्यों नहीं जाते आप भुखे पर मरते जे भगवान कृष्ण वर्गा तो मित्र है नाले वो अवतार भी है नाले राजा महाराजा भी है वो भी को क्यों नहीं जाते कुछ मिल जाएगा इस दिन चंगे मती तो जन स्वामी ने कि अपना गांव वाली गल तो तेरी ठीक है पर मित्र को मुद्दे शर्म ज्ञापी है शर्मता भी वो अवतार भी जरूर जब तो भाई साहब भाई गुरुदास जी लिखते हैं विप्र सुदामा दाल भी विप्र केंद्र पंडित सुदामा ब्राह्मण दाल भी बाल सिखाए मित्र सदाए लागू हुई बावड़ी करवाली सुशीला जड़ी थी उन्हें मजबूर कर दिया स्त्री का हट भी बड़ा जबरदस्त स्त्री खेल है वो भी बड़ा पर्व लागू हुई बावड़ी मिल जगदीश दलित्र गवाए चलता गिरदा गिटियां कीकड़ जाइए कौन पिलाए ये ठीक है बचपन इकट्ठे खेलते रहे खाते पीते रहे पर वो राजा बन गया मैं तो गरीब आदमी किस तरह की कोल मुलाकात होगी किस तरह के कोल पहुंचे भाई साहब जी लिखते चलता गिरदा गिटियां कीकड़ जाइए कौन मिलाए उनका नगर द्वारका से सिख द्वार खुलता है कई दिन बाद सिंह धर्मांत भी के जिसने द्वारका पहुंचे भगवान कृष्ण के महिला को अंदर जान लगा दरबार में रो क्या किधर जा रहे हैं जी मैं भगवान को मिल जाए पीछे हट बेचारा सुना मैं डरता आया पीछे हट कोई गल नहीं मैंने अभी पता थी गरीबा को हाँ होंगे एवें कारवाली ने जिद की थी आना ही नहीं पर सुदामा रो मना इतनी दूरों आए निराश ही चले जाएंगे भगवान ने तकिया रोंदा क्यों है सुदामे ने किया बड़ी दूरों आया आस तार के मित्र को मिलू आ रहा मित्र भगवान कृष्ण मेरा मित्र वाह भगवान कृष्ण के मित्र अपनी शक्ल वर्ता रहे इतने राजे महाराजे आके खड़ोते कोई पूछता नहीं तू किधरों का मित्र रो के कह लगा है दरबार मैं सच की दरबार के बीज ला के थके मत्थे से तिलक लगा होया ब्रह्म जा इतनी खैर पहला मैं जाके बेनती कर सुदामा बाहर ही खड़ोगे
ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅੱਗੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਰੁਕਮਣੀ ਤੇ ਰਾਧਿਕਾ ਜੀ ਚਰਨ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਿਆ। ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਤਮਾਸ਼ਾ? ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਆਦਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅੱਗੇ ਖੜੋਤਾ ਨਵੇਂ ਨਮੂਨੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਇੱਥੇ ਵੇਖੇ? ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਿੱਤਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਤੋ ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹੀ ਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਸਭ ਪਤਾ।

प्यास लगी, पानी दी पाल की थी, एक खूह नजर आया। उस खूह दे कोल जदों गए तां देखिया कि पहला भी कुछ लोग खलोते हुए पानी पानी कर रहे सन, क्योंकि पानी बहुत नीवा सी। खूह दे विचों ओ पानी कढ़ना बड़ा औखा सी। संत ज्ञानेश्वर अते नामदेव जी पहुंचे खूह दे कोल। पानी देखिया बहुत डूंगा है, बहुत नीवा है। पानी कढ़न वास्ते कोई इन्नी रस्सी भी नहीं। ता संत ज्ञानेश्वर जेड़े के पहुंचे हुए महापुरुष सन, अपनी शक्ति दे नाल खूह दे विच उतरे, पानी पीता। पानी फिर भर के शक्ति दे नाल खूह तो बाहर आए, चेलिया नू प्याया, कुछ लोकां नू भी प्याया, ते नामदेव नू कहा, नामदेव तू भी पानी पी ले। नामदेव जी कहन लगे, मैं पानी नहीं पीना, जेड़ा तुसी लेके आए हो। संत ज्ञानेश्वर कहन लगे, फिर नामदेव तू भी शक्ति दा मालक है, तू भी भगत है, तेरे विच भी शक्ति है, तू आप अपनी शक्ति दे नाल खूह दे विच जाके पानी पी के ते खूह दे बाहर आ जा। ए सुन के नामदेव जी कहन लगे संत ज्ञानेश्वर नू, मैं पानी तां पीना है जे मेरा रमैया मैनू पानी पियावे, नहीं तां मैं पानी नहीं पीना, क्योंकि मैं ओदे नाल प्यार करना ते ओदा फर्ज बनदा है कि ओ साडी प्यास बुझावे। ए कह के नामदेव जी उसे खूह दे कोल बैठ गए, हाथ विच खड़ताला।

कोरंक हिरण्यों के नाद आवाज एक कंड हेड़ा हुंदा है ओदी आवाज सुन के हिरण जेड़ा है उस आवाज दे पीछे भजदा है वो आवाज नाल प्यार करदा है। ऐ परमेश्वर जिस तरह मारवाड़ दे लोक पानी नाल प्रीत करदे ने ओठ वेला नाल प्यार करदा है कुरंक हिरण जेड़ा है कंडेड़े दी आवाज नाल प्यार करदा है इसे तरह

तीनों के इंद्र बरसात जिस तरह धरती बरसात नाल प्यार करती है, बरसात पवे तो धरती खिल उठती है। कुसम फुल नू के है बास खुशबू जिस तरह फुल दे नाल पवरा

जिथे अंब लगा हो कोकल जा बैठदी अते खुशी दे नाल गान लग पैंदी ए। इसे तरह मेरे रमैया जिवें धरती पानी नाल प्यार करदी ए, बरसात नाल पवरा फुल दे नाल कोकल अंब दे नाल।

तरनी के औरत नु कांत पति जिस तरह औरत पति नाल प्रीत कर दी इसे तरह है परमेश्वर मेरे रमैया।

जिस तरह तू है इस तरह इस नामे दे मानवे च भी ए परमेश्वर तू है कै ए नामदेव भी तेरे नाल इना प्यार कर दे जिवें होर साधक सिद्ध चाहते ने कि तेरे दर्शन होने।

बनारस रहा करते सन। किसी ने पूछिया कबीर तेरा गुरु कौन है। कबीर साहब कहन लगे गुरु मैं ता किसी नु गुरु तारिया नहीं। ता उस के जिदा गुरु नहीं ओदी गति नहीं हुंदी। कबीर तू गुरु जरूर तारन कर। कबीर साहब कहन लगे फिर गुरु किड़ा है ऐस वेले जेड़ा पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी होवे उस नू मैं गुरु धारण करा। तां दसन वाले ने कहा कबीर स्वामी रामानंद पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी हैं ओ गुरु तारण दे लायक ने तू उन्हां कोल चलिया जा। पर एक गल है स्वामी रामानंद ऊंची जात दे ने तू है जुलाया नीवी जात दा। स्वामी जी दे चेलिया ने तेनू स्वामी दे लागे नहीं लगन देना। पर एक तरीका है स्वामी रामानंद अमृत वेले उठ के गंगा ते इशनान करन जांदे ने। जे तेनू गुरु दी लोड़ है अमृत वेले उठ। जेड़ियां पौड़ियां गंगा दियां स्वामी जी उतरदे ने उन्हां पौड़ियां ते जाके लम्मा पै जा जे तेनू गुरु दी लोड़ है। ए सुन के कबीर साहब कहन लगे ठीक है क्योंकि गुरु दी लोड़ सी। कहन लगे मैं अमृत वेले उस रस्ते ते जाके लम्मा पै जावांगा जिस रस्ते तो स्वामी रामानंद रोज सवेरे अमृत वेले गंगा इशनान करन जांदे ने। रात पई पर कबीर साहब नूं नींदर नहीं आ रही क्योंकि गुरु दी लोड़ है ते जिनू गुरु दी लोड़ होवे उनू दुनिया भुल जांदी है। दो ही गल्लां ने या दुनिया खुश कर लीए या गुरु नूं खुश कर लीए। जे ता गुरु नूं खुश करना है ते फिर दुनिया दा त्याग करना पवेगा। दुनिया दा त्याग घर बार छड़ के नहीं। घर बार तियां पुत्रां माया विच रहिंदिया होया परमेश्वर नूं याद करना माया विच रहिंदिया होया माया दे उत्ते काबू पा के रखना मोह माया तो उत्ते उठ के रहना ए दुनिया दा त्याग हुंदा है। दुनिया छड़ के जंगलां विच जाना कोई त्याग नहीं। कबीर साहब कहन लगे मैनू गुरु दी लोड़ है। आप अद्धी रात हुई घरों उठे ते गंगा घाट वल तुर पए।

कबीर साहब नू गुरु दी लोड़ है अधी रात घरों उठे गंगा घाट जा पहुंचे जिहड़ियां पौड़ियां तू स्वामी रामानंद उतरिया करदे सन कबीर साहब मूह सिर लवेट के उन्हां पौड़ियां ते जाके लम्मे पै गए। इस कथा नू भाई गुरुदास जी ने अपनी पौड़ी दे विच बयान कीता है। आप स्वामी रामानंद बारे इउं अपनी पौड़ी विच लिखदे हन।

अमृत वेले उठ के जांदा गंगा नहावण ताई स्वामी रामानंद अमृत वेले उठ के रोजाना ही गंगा इशनान करने वास्ते

स्वामी जी तू पहला ही अगे ही दे जाए के लम्मा पया कबीर तिथाई जेड़े रस्ते तू स्वामी जी ने लंघना सी उस रस्ते ते कबीर साहब जाके लम्मे पै गए।

बड़ी मस्ती विच राम राम कर दे तुरे आ रहे ने। गंगा दियां पौड़ियां उतरन लगे, देखिया पौड़ियां दे विचकार कोई सुता होया। रस्ता नहीं सी क्योंकि कबीर लम्मा पिया सी। स्वामी जी कोल होए अपने पैरां दी, स्वामी जी कोल होए अपने पैरां दी ठोकर लाई कबीर दे शरीर नूं। ते कहंदे ने भांडे विच जिहड़ी चीज पाई होवे ओही निकलदी। जे किसे भांडे विच दुध पाया है तां दुध ही निकलेगा। जे किसे भांडे विच शराब पाई है तां शराब निकलेगी। पर जिहड़े महापुरश ने इन्हां दे विच तां परमेश्वर वसदा है, परमेश्वर दा नाम वसदा है तां नाम ही निकलना है। स्वामी रामानंद ने पैर दी ठोकर लाई कबीर दे शरीर नूं ते नाले किया उठ राम के राम कहो। ए सौण दा वेला नहीं, ए नाम जपण दा वेला है। भाई गुरदास जी आप बयान करदे ने।

तीसरे भगत भगत तन्ना जिन्हां बारे भाई गुरुदास जी अपनी पौड़ी विच आप बयान करदे ने।

तीसरा दिन चढ़िया ते तन्ना कहन लगा हौं भी मुंह ना जुठालसा तू रुठा मैं क्यों ना सुखावे ऐ परमेश्वर जे तेरा धर्म है के पंडतां दे हत्थों खाना ते मैं भी जाटना फिर मेरी भी जिद है कि जद तक तू रोटी नहीं खाएगा मैं भी कुछ नहीं खाना तू मेरे नाल नरा

0: परमेश्वर नू रोटी खवाई तन्ने ने भी खा ले। परमेश्वर कहन लगे लै भाई तन्ने आ रोटी तां असीं खा ली हुण दस तैनू चाहीदा की है। तू याद कीता मैं आया हुण मंग तैनू की चाहीदा। तां तन्ने ने हाथ जोड़ ले कहन लगा भगवान मैनू ए नहीं पता कि अरदास किवें करी दीए। लोक तेरी आरती करदे ने पर मैं तेरा आरता करना। आप जी बयान करदे ने भगत अन्ना जी अपनी बाणी विच आप
1: गोपाल तेरा आरता।
0: गोपाल कहंदे ने दुनिया नू पालन वाला परमेश्वर अकाल पुरख

गौ भैंस मांगो लावेरी। गौ भी चाहिदी ते मझ भी चाहिदी पर हुण लावेरियां लावेरियां कहिंदे ने दुध देण वाली। मझ भी चाहिदी गां भी चाहिदी पर ओ जिहड़ियां दुध देंदियां होण।

पोड़ी नुके ऐ भगवान पैरी सोनी जुती पाई होवे सोना सूट पाया होवे घर विच अनाज भी होवे गां ते मज भी होवे ते किधरे आना जाना पै जावे ते पैदल तुर के जांदा फिर आदमी चंगा नहीं लगता कपड़े चंगे पाए होन ते तुरिया जावे पैदल चंगा नहीं लगता आना जाना भी पैंदा है दूर इस करके कृपा कर एक ताजन तुरी चंगेरी एक सोनी जी घोड़ी भी दे ताकि किधरे आना जाना होवे ता ओ सफर मैं

सन तो ज्यों ज्यों सन बढ़ रहे हैं असी खत्म नहीं हो रहे सगा होर वधे जा रहे हैं। तू एक दिन जरूर मर जाएगा पर गुरु के सिंह कदी खत्म नहीं हो सकते। क्यों कि सच वास्ते लड़दे ने इंसाफ वास्ते अपने वास्ते नहीं।

सताए हुए हिंदुस्तान दे लोग जिहड़े गुरु साहिबां नूं पसंद करदे सन उन्हां विच मुसलमान भी सन जिहड़े मुगल हकूमत दा जुलम पसंद नहीं सन करदे। ओ सारे लोग गुरु साहिबां दा हमेशा साथ दिंदे रहे ने जिहड़े इंसानियत नाल प्यार करदे ने, क्योंकि गुरु साहिबां दा एहो ही मकसद है, रब एक है। उन्हूं किसे नाम नाल याद करो।

लोग बड़े दूर चले गए। गुरु ने खालसे नूं अपना स्वरूप दिता है ते ना लिखिया जदू तक खालसा खालसा रहेगा वो कदी हारेगा नहीं। मैं भी उहदे नाल रहांगा ते जिदा सिर्फ भेस ही खालसे वाला है जिदी रहत नहीं वो खालसा नहीं। खालसे दा मतलब खालस जिदे विच कोई विकार नहीं वैर विरोध दी भावना नहीं जिदा जीवन विकारां तों उत्ते है वो खालसा ते खालसा गुरु दा रूप। पर बड़े ऐसे लोग ने जिन्हां दा पहरावा ते है पर वो गुरु के सिख नहीं।

वाला, संता महापुरुषा वाला, भगता गुरमुखा वाला, पर ना भगत ने ना गुरमुख ने ना सिख ने ना खालसे ने, सिर्फ पहरावे दे नाल

महापुरुष गुरमुख नहीं हैगे, गुरमुख भी हैगे ने, भगत भी हैगे ने, महापुरुष भी है ने, खालसे भी हैगे ने, पर बहुते धर्म तो दूर, गुरु तो दूर, दुनिया नु धोखा देंदे ने। महापुरुषां दे जीवन दी नकल, भगतां दे जीवन दी नकल असलियत नहीं। इथों तक कि जेड़ा उठदा है वो गुरु नू, वो परमेश्वर नू खलौना।

गुरु दी रहत तू दूर, ओ गुरु की खुशी कदी प्राप्त नहीं कर सकता। आओ अरदास करिए, सच्चे पातशाह कर कृपा, उच्चा सुचा गुरसिखी जीवन दे, असलियत वाला जीवन, नकला भरिया जीवन नहीं, अंदरू होर बाहरू होर जेहो जिहा जीवन होवेगा ते कौम नू हमेशा औकड़ां दा सामना करना पवेगा। जगह जगह सिर ना चुकाओ, वखरे वखरे

नौजवान कहने लगा, मेरे नाल ऐसी बीती ऐसी बीती कि मर्दा मर्दा में बच के आ गई। मैं आख्या ये मर्दा मर्दा बच के आए, वेखी किधरे बचदा बचदा ना मर जाए। जदों सिख सोचन लग पैंदा है मैं हुण बचना है, ते गुरु दे सिक्खी नूं तलांजली देनी शुरू कर दिंदा, गुरु नूं पिठ देनी शुरू कर दिंदा। ते मैं क्या वेखी किधरे बचदा बचदा ना मर जाए। गुरु कलगीधर दे सन्मुख रवी, गुरु तो बिना किसे कम नहीं आउणा। भाई गुरदास सिंह जी कहंदे

वही नदी के किनारे से दुनिया नु तारन वाला मेरा धन गुरु नानक समाधि लगा के बैठा है।

अमृत में प्राप्त कौन कर दे हम जिम झिम बरसे अमृत धारा मन पीवे सुन शब्द विचार जिन्होंने भाई शब्द नु सुने कन्ना नु कटोरे बना के निरोल अमृत बाणी का रस पीता है ओ खुशकिस्मत गुरु नानक दे दर ते सदा ही अमृत रसता है पर पीले भागा वाले किसी महापुरुष ने लिखे है कि जिन्हों के अंदर प्रेम की रत्ती बिन अमलों तो खीवे उन्होंने झूठे अमल की लोड़ ही नहीं जिन्हों के अंदर प्रेम की रत्ती बिन अमलों तो खीवे अठे पहर महल विच चानन बरन प्रेम दे दीवे फिर एवें नहीं बलदे भाई दीवे बाबा जी बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज कलेरा वाले महापुरुष फरमाते हैं दीवा जगाने वास्ते बड़ी मेहनत करनी पैंदी पहला तो दीवा बनाइए फिर उसनू पकाइए ओदे वास्ते तेल सरसों नूं नपीड़ के कढ़ना पैंदा सरसों कितों उगदी बड़ी मेहनत फिर तेल पै गया अजे भी नहीं जगदा वट दी लोड़ ओदे वास्ते कितनी मेहनत करनी पैंदी फिर वट भी लगा रखी है हुण जगाइए भाई दीवा ए सोहना दीवा जगाई किवें जगेगा प्यार दे नाल दीवा दे जो भी जग गया दीवा फिर लोकी आपे कहेंगे नहीं फलाने घर दीवा जगदा पे आखो सी भाई सारे आखो भाई सरत माई भाई जो मेरे धन गुरु नानक दे दरबार च आके जुड़े हो आओ भागा वाले हो अपनी रचना पवित्र करो सेवक दे कन सफले करो प्यार नाल आखो सतनाम धन्यवाद जो गुरु ने प्यारे जुड़ बैठे हो और गुरु जिसने सानू सबों कुछ दिता साडे वास्ते बारह बारह साल उदासियां धार ली बेबे ने कहा सी वीर वे देखना निके निके बच्चे श्री चंद लक्ष्मीदार तुसी बाहर चले जाते हो ए फिर उदास होके मेरे को आ जाते हैं कई दिन बेबे साडा भी कोई बापू है आखो सी अगला भी कोई बापू दूजिया के बापू अपने बच्चिया मठियाईया लिया के दें खिलौने लिया के दें तरह तरह की चीजा लिया के दें बेबे साडा भी कोई बापू वीर ने इन्हों छाती ना ला के कहनी है पुतो तुहाडा बापू दुनिया का बापू है वीर हुण ना जाए हुण ना परदेसां नूं जाए तो प्यारी साध संगत परवकारी दाता जी दोवां बच्चियां नूं श्री चंद ते लक्ष्मीदास गोडियां ते बैठे सानूं ठा दिता पुत्र जगत दा मिठा मेवा है प्यारिओ पुत्र पिठ नाल आके लग जावे माता पिता दी छाती चढ़ जाती है पर मेरे दाते ने अपने पुत्रां नूं उठा के ते बेबे वाल मुखातर होके कहा सुन के गल ए पीरां दे पीर बोले सुन के गल ए पीरां दे पीर बोले रब आप ही पाल सी सारियां नूं जद के रब दे नाल सब दुखी दिसन करा की मैं दुआ दुलारे बेबे मेरे निरंकार रब बनाया संसार दुनिया दुखी है काम करो लो मोहंकार की अगली साली बेबे मेनू जान दे ना बिठा इतने संसार रोगी हो चुका है ए संसार रोगी नाम दारू नाम दा दारू दिता उस दाते ने जिस दारी गुरुपुरब मना रहे हो यही दात बनती है आए कर प्यार नाल पढ़ो पहले सेहत बोले तो पिछे सारी सही संगत गज के अपनी अपनी हाजरियां लगवा लो बाबा जी बचन करते सन जरा संगत जाके रौला पाता है तो इतों कुछ नहीं लगा जरा चुप करके बैठा रहा शब्द की धारणा नहीं करता
بابا جی کہندے سن او گرو کی دگا کا چور ہے تے جڑا گج کے بولدا ہے تے گرو نانک دے در تے دی حاضری لگ جاندی ہے گرو نانک حاضر ناظر تے آو لگاؤ حاضریاں ساڈا گرپور منایا سفلا ہو جائے پیاری ساتھ سنگتی پہلا سیو بولے پیچھے ساری سنگت

मेरा नहीं जी करदा। मन विच बैराग भर लिया, सतगुरु एडा केड़ा मेरे कुलों गुना होया है, तुहानू एडा दुख होया है। सतगुरु आखण लगे, ओए गुरसिखा एक चिट्टा वाल तू इस करके पट दिता भी तेरी खूबसूरती खराब करदा है। हुण तू किन्ना क खूबसूरत लगदा है, किन्ना क सोहना लगदा है। अज जदों इसने ये सुनिया ते रो रो के हंजुआ दे नाल कलगीधर पातशाह दे चरण धो दिते। पातशाह एक बाल पुटण ते तुहानू एडा दुख होया है, जे मैनू पता हुंदा एक बाल पुटण दे नाल तुहानू एडा दुख होना है ते ए गुनाह मैं कदे भी ना करदा। मैनू बख्श देवो, ए गुनाह अणजाणे विच होया है। ते कलगीधर दे सिंघो झात मारो अपने इतिहास वल, एक बाल पुटण ते कलगियां वाले नू किड्डा दुख होया है ते असी अज किड्डियां कुरैतां करदे हां, ते असी सोचना है कलगीधर साडे ते खुश होवेगा। कित्थों खुशियां मिलणियां ने, सतगुरु बख्शिश कर रहे ने। ओही मेरा सिख है जो रहत विच रहिंदा है, जो दसी मर्यादा दे विच रहिंदा है, एही मोर आग्या सुनो हे प्यारे। ए मेरा हुक्म है, केसां दी संभाल भी करनी है ते खंडे बाटे दी पौल भी लैनी है, फिर तू इस दरबार विच प्रवान होवेगा।

झूठ ना बोली संगत विच खलोता है। हाथ जुड़ गए, बाबा जी मां जान के सेवा कदी नहीं कीती। ते ब्रह्म ज्ञानी बाबा आनंद सिंह जी आखण लगे, ओए चनना मां नू तके मार के रब नू घरों बाहर कढ़ के ते संतां दे डेरियां ते सुख पालदा फिरदा है, वो तेरी मां नहीं वो तेरा रब है। जे तू सुखां दे नाल झोलियां भरनियां ने ते जा अपनी मां दी सेवा कर, तेरा रब तेरे घर बैठा है। ते सतसंगियो कलगी तर पातशाह भी यही आख रहे ने, कहिंदे जिहड़ा सिंह अपनी माता पिता दी सेवा नहीं करदा उहदे नाल मेरा कोई संबंध नहीं है। जिहड़ा अपने बजुर्गां दी सेवा नहीं करदा सत्कार नहीं करदा उहदे नाल मेरा कोई संबंध नहीं, कोई रिश्ता नहीं। उहदे नाल रिश्ता है जो अपने माता पिता दा सत्कार करदा है, अपने बजुर्गां दी संभाल करदा है।

दुख दारू सुख रोग भया जा सुख ताम ना होई। तू करता करना मैं ना ही जाऊं करी ना होई। बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत ना जाई लख्या रहा हो। जात में जोत जोत में जाता अकल कला भरपूर आ। तू सच्चा साहेब।

जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास, हर हर नाम मिले तृप्ता से, मिल संगत गुण प्रगाश, जिन हर हर हर रस नाम न पाया, ते भागहीन जम पास, जो सतगुर शरण संगत नी आए, त्रिग जीवै त्रिग जीवास, जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन दुर्मस्तक लिख्या लिखास, धन धन सत संगत जित।

छे जन युग में सुखवासी छे मुकत भय जिन हर ध्याया जी तिन टूटी जम की फांसी जिन निर्भो जिन हर निर्भो ध्याया जी।

अनेक पढ़ें वो सिमरत सासत जी कर क्रिया खट कर्म करंता छे भगत भले जन नानक जी जो पावे मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपर

दे रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रह हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष सबै तुम घावो आप हाथ दे मोय बचाओ सुखी बसे मोरो परवारा सेवक शिक सबै

के सुखी एक एक की पीर पछाने घट घट के पट पट की जाने जब उदकर करा कर तारा प्रजा धरत तब दे अपारा जब आकर्त करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देदार सब हूँ जेते बदन सृष्ट सब धारे आप अपनी बूझ उचारे।

ताको कर पाहन अनुमानत, महामूल किस भेद न जानत, महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का चीनत ने भैव, आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तो तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, कह विद सजा प्रथम संसारा, एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राव कई रूपा, अंडज जे रज से तज कीनी, उत पुज खान बहोर रच दीनी, कहूं फूल राजा हवे बैठा, कहूं सिमट प्यो शंकर कैठा, सगरी सेठ दिखाए अचंभव, आद जुगात स्वरूप सी अंभव, आवरिच्छा मेरी तुम करो, शिख उबारा शिख संघरो, दुष्ट जीते उठवत उत्पाता, शकल मलेश करो रण घाता, जे अस तुझ तव सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखत।

तय सब काला दुष्ट अरिष तरे तत्काला कृपा दितन जाय निहर हो ताके ताप तनक मो हर हो रिद सिद्ध घरमो सब होई दुष्ट शाह स्व सकै न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताय उबारा जिन नर नाम तिहारो कहा दारद दुष्ट

सुख भय करके अर्थात समुद्र की मन कहो काट बनास्पति सगरी दिख बहु के लेखन खाज बन हो सारसता पकता करके जब कोट गणेश के हाथ रखे हो काल कृपा ना बिनती

तेरो अंत न करो मैया कोट भरा दो हमारे हंडो कोट भरा दो हमारे हंडो अनक विधि समझाओ अनक विधि समझाओ हम अज्ञान अलप मत थोरी तुम आप

समाधि लगा के बैठे। अमृत वेला है, सारी कुदरत विस्माद पर आकाश से तारे चमक रहे हैं। तारियां दी लो विच कोई प्यार वाला प्रेमी अपने मन दे अंदर प्यार दा दीप जला के प्यारे नाल जुड़े। इस तरह नदी दा पानी अपने प्रीतम नू मिलन वास्ते तुरिया जांदा है। इस दे अंदर आस है मिलाप दी। इसी तरह जीवन आशावादी है, जीवे आशा मरे निरा। साईं दे प्यार विच ए भी किसे अगमी आस विच बैठा है। अमृत वेले जुड़िया है।

नानक पातशाह संसार नूं उतारदे होए जदों सिद्ध मंदरी विच पुजे, धन गुरु नानक सच्चे पातशाह जी दे अमोलक दरगाही बचन सुन के सिद्ध बड़े प्रसन्न हो। सिद्धा ने बेनती की थी कि जिस परमात्मा की कथा अकथ है अते जो परमेश्वर सारिया नू रिजक दे रहा है, लैण वाले थक जाते हैं, देन वाला कदे नहीं थकता। वो परमेश्वर जो अनथक है, गरीब नवाज कृपा करो, सानू दसो ओ साहब कैसा है, उसकी साहबी कैसी है, उसका नाम कैसा है। तां धन गुरु नानक पातशाह कहिंदे हन, साचा साहिब साच नाए, ओ सच्चा साहिब है, उदा नाम भी सच्चा है।

सच्चे साहब दी हजूरी विच जदों जाइए तां पेटा की रखिए। अलख निरंजन एको वरतै एकै जोत मुरारी, सब जाचक तू एको दाता मांगे हाथ पसारी। लाकीरी तो बर्मा तक अकाल पुरख वाहेगुरु दे दर तो ही सारे मंग रहे हैं, ते उस अकाल पुरख वाहेगुरु अगे की रखी। ए तन दौलत पदार्थ तो ओदी देन है और जुगा जुगंतर सानू देंदा आ रहा है, पर असी की रख सकते हैं ओदे अगे। ता तन गुरु नानक सच्चे पातशाह कहन लगे, भाई अमृत वेले उठ के इशनान करे ते एकागर चित होके मोह के बोलन बोली है जित सुन धरे प्यार। इस मुख दे नाल अकाल पुरख वाहेगुरु दी उस्तत कर, ए उस्तत उसकी बेटा करेगा ए कबूल कर दे। किसी तन दौलत दे वटे प्रसन्नता नहीं मिलनी। तन गुरु नानक पातशाह

रानी राजा हरिचंद बड़ा धर्मात्मा राजा होए। इसकी घरवाली भी बहुत धर्मात्मा सी। वड्डी राती उठ के सतसंगत विच जाके बैठना ते फिर राजे दे उठन तो पहला पहला आके फिर आके सौ जा। इसे तरह कितना समा सतसंग करदी रही, नाम दा रंग चढ़दा रहा, अकाल पुरख वाहेगुरु दी कृपा होंदी रही। क्योंकि रंग लागत लागत लागत है, जेहो जी कोई संगत विच बैठदा हौले हौले ओहो जिहा ही रंग चढ़ जांदा। क्योंकि पंछी जेहो जे ब्रिश ते बैठेगा ओहो जे ही फल प्राप्त होणगे। जे अंब दे ब्रिश ते बैठा है तां अंब ही मिलने हैं। इसे तरह मनुख दा जीवन जे शाकत पुरशां विच जा पवे तां पापां दा भागी बन जांदा। जे सत संगत विच जांदा तां इसते पुन वध जांदे हैं। राजा हरिचंद की घरवाली रोज सतसंगत विच जाके गुरबाणी का कीर्तन सुनना, आनंद मानना, क्योंकि ये भी आत्मा की खुराक है। जिस तरह साडे शरीर नू खुराक की लोड़ है, साडी आत्मा नू भी परमेश्वर के नाम की लोड़ है। वो नाम का भोजन छकती है जो साडे अंदर, जिदे सदके साडा शरीर चल रहा है ना, उसनू ही भोजन की भुख लगती है। पर वो भोजन नाम का शक्ति है। उच्चारण करो श्री। तो तारा राणी सतसंगत विच रोज जाना ते राजे दे जागन तो पहला पहला आके फिर सौ जाना। अज अचानक राजे दी जाग उगड़ी तो की तकिया कि राणी नहीं सुती। मन विच शक पैदा हो गया किधर जाती है अद्धी राती उठ के। मन विच सोचिया जितने तक कोई अखी ना वेख लईए ता उस तरह एवें किसे नू कलंक लाउना या कह देना चंगा नहीं है। चंगी तरह शान बीन कर लेनी चाहिदी है भी किधर जाती है। ता राजा अज सुता नहीं पर उवें ही कराड़े मारन लग गया। ते राणी ने समझा वही हुण आराम विच हो गया है। ते राणी सतसंगत वल तुर पई। मगरे मगरे राजा जा रहा है। राणी जदों सतसंग विच जा पहुंची ते मन नूं त्रयास आया वही चलो किते माड़े पासे तां नहीं ना जांदी, किते माड़े पासे तां नहीं ना गई। अकाल पुरख वाहिगुरु ईश्वर दी भगती विच ही जुड़ी हुई है। पर राजे ने राणी दी एक खड़ाओ चुक के घर ले आंदी। भाई पुछांगे भाई तेरी दूजी खड़ा किथे है। ते राजे ने आके संदूक विच उस खड़ा नू बंद कर देता। राणी जदों कीर्तन सुनदियां कीर्तन दी समाप्ति होई ते बाहर निकली तां एक खड़ा दा जोड़ा पिया। बड़ी डरी कि मैं राजे नूं की जवाब देवांगी जदों पुछेगा भाई दूजी खड़ाम किथे है। तो मैं जवाब की देंगी। मुड़ के जाके साध संगत विच जाके बेनती कीती कि साध संगत अरदास करो मेरी दूजी खड़ाम मैनू मिल जावे, मेरी पत रह आवे, मेरी इज्जत रह आवे। जे राजे कोल ए पोल जार हो गया ता राजा मेरे ते शक करेगा। उच्चारण करो श्री। सारी संगत ने जदों अरदास कीती ता अकाल पुरख वाहिगुरु ने ओह जी पुरानी खड़ाव परमेश्वर ने भेज दिती। कोई पछाण नहीं सकदा कि ए पुरानी है जा नवी है। राणी आके उसी तरह रोज दी तरह सौ गई। सवेरे जदों राजा उठिया ता कहन लगा आ जरा अपनियां खड़ावां तो दे, मेरियां हैन नहीं इत्थे नेड़े ते मैं इशनान कर दवां। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु।
ਰਾਣੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਖੜਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੜਾਵ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸਾਂ, ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ। ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਪੇਟੀ ਖੋਲੀ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੜਾਵ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੱਚ ਸੱਚ ਦੱਸ, ਇਹ ਦੂਜੀ ਖੜਾਵ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਤੇਰੀ ਖੜਾਵ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਪੇਟੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜੰਦਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਦੂਜੀ ਖੜਾਵ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਏ? ਤਾਂ ਰਾਣੀ ਦੇ ਨੈਣ ਕਟੋਰੇ ਭਰ ਆਏ। ਆਖਿਆ, ਰਾਜਾ, ਇਹ ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਜਿਆ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਰੱਖਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੋਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵਿਛੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚ ਨਾਉ, ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ।

कुकुर के लोग बसेंगे ते रेणी रे सोई दिल मेरा ओ साहेब मैं उसका तेरा रहत बिना ने सिंह कहावे रहत बिना दर चोटा खावे रहत बिना

गुरु अर्जन देव जी का कातिल दरअसल जहांगीर ही सी, पर जहांगीर तो इलावा मुर्तजा खां ते चंदू दा भी हाथ सी। चंदू बादशाह जहांगीर दा शाही दीवान सी। जदों चंदू दी धी मुटियार होई ता उसने अपनी धी वास्ते चंगा वर्कर लभन लई एक पांदे ते एक नाई नू जो कुछ समझा के तोरिया है उन्हां बोलां नू ढाडी जथा हे क्यों दसदा है।

गुरु जी दी तारीफ दी गल सुन के चंदू दीवान खुश होने दी बजाए गुस्से विच लोहा लाखा हो गया। माया तारी अत अन्ना बोला, शब्द ना सुने बहरोल कचोला, दे महवाक अनुसार चंदू दीवान कहन लगा, ओ किथे मैं शाही दीवान ते किथे अर्जन देव इक फकीर, किथे राजसी शक्तियां ते किथे साधां दा डेरा, ओ तुसी चुबारे दी इट मोरी नू लाए हो। चंदू दीवान गुस्से विच लोहा लाखा होया कहन लगा, भावे तुसी मेरे मुताबक चोन ठीक नहीं कीती, पर फिर भी मैं तुहाडा मान नहीं तोड़दा, जाओ जाके सगन पा आओ। ए सारियां गल्लां दिल्ली दियां सिख संगतां ने सुन लिया, उन्हां दा मन बड़ा परेशान होया, क्योंकि सच्चा सिख कदे भी अपने गुरु दी निंदिया नहीं सुन सकदा। गुर की निंदा सुने ना कान, कानो घूर के पिछा हटांदा ऐ, जे तू प्यार नाल नहीं बिठाउण जोगा, हंजू वेख के कास तो हसदा ऐ, जे तू रोंदिया नू नहीं वरौन जोगा, कानो दुख दे दिला नू दुखांदा ऐ, जे तू जख्मा ते मलम नहीं लौन जोगा, कानो बंदिया कूड़ विहासदा ऐ, जे तू नेकियां नहीं कमौन जोगा। दिल्ली दिया सिख संगता ने गुरु अर्जन देव जी महाराज दे नाम एक चिट्ठी लिख के हे क्यों भेजी आवे।